0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
6: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath, sirf Leica Gold par.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जाए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस लख।

जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio पार्टनर Leica Radio Network।
8: यार कई बार मुझे अपने गांव के छोले भटूरे याद आते हैं, वही स्वाद वही खुशबू।
9: तो रुक क्यों रहा है, वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउस लो के बीकानेर वाला में।
8: सच?
9: अरे बिल्कुल, छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट जैसे माँ के हाथों का बना हो।
10: बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया अब हाउस लो हाई स्ट्रीट में। आज ही विजिट करो।
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan।
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
12: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Mamster Panipuri or Panipuri ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
5: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
6: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
0: हिमालय कारपेट्स की धधकती हुई सेल. गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. रूम साइज लेमिनेट्स 30 pounds से शुरू. तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ. लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर. एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर. रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है. चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रहे छे.
2: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आ पवित्र यात्रा पर.
4: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स.
2: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे.
4: दर्शन पण अने यूरोप पण.
2: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
4: कॉल 02089002323. द स्टार टूर्स.
2: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
5: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
6: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network. Gold Breakfast with Kajal.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarver here, starting at Wandsworth and the A218 Buckhold Road. We've got the traffic having to take turns in both directions due to emergency gas repairs, and we've got temporary traffic lights in place. South Ruislip, the A40 Western Avenue, still partially blocked, and stop-start traffic as a result of an accident just after the Polish War Memorial, and we're seeing congestion to Greenford and onlookers opposite back to Hillingdon as well, so really busy both directions there this morning now. Tubes and trains, Metropolitan Line cancellations and severe delays reported on the Metropolitan Line, and District and Piccadilly Line still not stopping at Barnes Court.
3: Dreaming of a new kitchen? Getting started couldn't be easier. At Wix, you can begin planning your new kitchen with our design consultants. Simply arrange a free home measure or an in-store design consultation. Book your free kitchen design appointment and turn all your ideas into reality at Wix.
0: Leica Gold.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Every morning a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital to agency that doesn't play safe.
8: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट हिमालयकारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
11: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
12: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208951011.
0: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
13: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
6: Time for listener of the week.
7: Hi, my name is Sejal and I'm the listener of the week on Laika Gold. I love listening into the Gold Breakfast Show because it just takes me back to my childhood and happier times. Listen to my playlist from Monday to Friday only in the Gold Breakfast Show with Gajal on Laika Gold.

0: Set Co Food Containers, total satisfaction.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: There's no more worries for me or you.
3: Southall Travel, auto protected.
4: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट हिमालयकारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल Visit the Ealing Hospital.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: Eviction, tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords aur tenants ke liye fast action lete hain aur residential aur commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
8: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
9: sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Calls Sonatours on 0208-951-0111.
10: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno LeicaGold.com pe.
11: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: ये है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: Visit travelhubworld.com.
3: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
4: Shaam chalne lage dil mat
3: With the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
6: यू नो हाउ यूके वेदर कैन डू फुल ड्रामा विद आवर हेयर वन डे फ्रिज वन डे फ्लैट That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here. First of all, we'll start at South Ruislip, the A40 Western Avenue, heading out of town. Long delays and stop-start traffic as a result of the accident just after the Polish War Memorial. We've got congestion to Northolt and onlookers back to Hillingdon as well. A218 Buckhold Road at Wandsworth, still got traffic taking turns as a result of the emergency gas repairs. Temporary traffic lights remain in place there. And M4 onto the elevated section, got the usual delays between Hayes and Brentford. Public transport still got cancellations and severe delays reported on the Metropolitan line. That's your latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इलफोर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Dreaming of paradise?
8: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923-883-100. That's 01923-883-100.
7: At all protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
9: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
9: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण.
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
2: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स.
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। संगीत की एक और सौगात, प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ एक और म्यूजिकल मुलाकात, एक और दिन जिंदगी का एक और मनोरंजन लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। सोमवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की आज है 20 तारीख। कैसा रहा आपका वीकेंड? बहुत बढ़िया रहा होगा। मैं हमारा बहुत अच्छा रहा, सात्विक भी रहा, हसीन रंगीन भी रहा, मेला था, रवि शर्मा बिल्कुल नहीं अकेला था। मैं रथ यात्रा का आनंद लिया, लोगों से मिले, मुलाकातें हुई, बातें हुई, और जब वो भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का अवसर मिला और भाई राजनेताओं से, सामाजिक लोगों से, बहुत सारे भाई पुराने श्रोताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। कैंटन में स्वामीनारायण मंदिर से लेकर के और भाई वुड लेन स्थित स्टैनमोर के स्वामीनारायण मंदिर तक रौनक ही रौनक। इसके अलावा भाई और भी कई काम पूरे किए, बाकी इस सप्ताह में निपटाएंगे। अब आपका दिल बहलाएंगे। दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं और ये बताना चाहता हूं कि ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, जमाने के रंगीन नजारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा। डेफिनेटली कुछ गीत में कह देंगे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Goon. Officially London's number one Asian retro music station.
0: सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा। नहीं दरमियां कोई अपनों सा बंधन, मगर तेरी चाहत तेरे प्यारों से ज्यादा। तुझे प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा।

0: ऐसी शुरुआत होती है भाई प्रोग्राम की लाइका गोल्ड रेडियो पर। दो गीत मीठे सुरीले हमने परोसे आपको, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। भाई बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, दैट वाज एस बी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, और अभी जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज लता जी वॉइस। तो इस तरह से भाई कार्यक्रम शुरू हुआ, वीकेंड गुजर गया, बहुत सारे काम आपने अधूरे पूरे किए होंगे, और अब जुट जाते हैं नए सप्ताह में नई उमंगों के साथ, तरंगों के साथ, गीतों के साथ, बातों के साथ। सबसे पहले बताते हैं पाउंड का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK रेट बता रहे हैं आज का। भाई अगर पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं भारत में, तो आज वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 128 रुपए और 90 पैसे। चमाकी जी अभी रेट बदल के आ लीजिए, 28 से बढ़कर 29 हो गए हैं, 129 रुपए 45 पैसे। द लेटेस्ट रेट इज एट दिस मोमेंट बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। 129.45 रुपीस।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold. 10:35 AM.
1: Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Dogs and cats. Sure, they need a lot, but they're worth every penny. Still, would be good if you could save a few pennies, right? Well, if you've got a Tesco Club Card, you'll get a Club Card discount on Tesco Pet Insurance. And all policies include VetPhone for peace of mind 24/7. Just search online for Tesco Pet Insurance. Pets age 8 weeks or over, VetPhone provided by Vets Direct Limited. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Arranged by Pinnacle Insurance Limited.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers. Two businesses.
2: Same town.
0: Same service.
2: One appears on page one of Google.
0: The other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
0: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
0: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
0: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
0: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
4: Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। That's 0208-907-2444।
10: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
11: London, good news! Your favorite iTech, up TRS Cash and Carry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
12: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
13: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या बात है, हुस्न की तारीफ करने का ये अंदाज ऐसा भाई भाया लोगों को कि बहुत लोगों ने इसे बार बार गाया, सुना और दिल में उतारा। स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में आई थिंक मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत। फिल्म का नाम था, क्या नाम था फिल्म का? वेल आई थिंक इट वॉज हरियाली, हाँ हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में फिल्म का गीत था। और भाई इस तरह से ये गीत हमने आप तक पहुँचा। अब जो गीत पहुँचा रहे हैं इसे सुनिए और उसके बाद खबरों के लिए तैयार रहिएगा। काफ़ी कुछ हुआ वीकेंड पर भाई, एक तो वो फुटबॉल का महाकुंभ, उसका समापन हुआ, हाँ और भी कई घटनाएँ घटी हैं। क्रिकेट का तो चल ही रहा है भाई, वो भी सीरीज जो है इंग्लैंड के हिस्से में गई, लेकिन बहुत अच्छा खेल, जबरदस्त प्रदर्शन। इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के लिए वर्ल्ड कप मुकाबले में भाई मनवाया कि हम भी ठीक है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन तीसरे नंबर पर तो आए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: देखा वर्ल्ड कप, देखा ट्रंप ताऊ जी आए। आजकल ट्रंप जी जो वो कहते हैं मैं फैसला कराता हूँ, बहुत जंगे रोकी हैं मैंने, बहुत समझौते कराए हैं, तो वो मैच में एक बॉल को लेकर के मारामारी चल रही थी, उनको समझा बुझा के क्यों नहीं कहा कि भाई मत खींचो इतना लंबा मैच को। बोले अवार्ड मैंने देना था इसलिए।

0: दुश्मन दोस्तों से ज्यादा प्यारा। भाई ये गीत लगा कुछ न्यारा। हाँ आपको बता दें ये गीत आप तक कौन पहुंचा रहे थे?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अरे साहब इन्होंने तो वो गीत सुनाया था जो चांद सी महबूबा वाला था, ये गीत तो आप तक पहुंचा रहे थे ये लोग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और मनोरंजन सिर्फ गीतों के द्वारा ही नहीं भाई, बातों से भी कुछ जानकारी पहुंचाते हैं हम आप तक और सुनवाते हैं खबरें भी। और खबरों में जो सबसे गर्म खबर वो तो ये है कि भाई यहाँ जो परिवर्तन हुआ है लीडरशिप में, बर्नहम टू मीट किंग एंड एंटर डाउनिंग स्ट्रीट विद बिग कैबिनेट अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड। एक बड़ा मंत्रिमंडल उनका होगा, देखते हैं किन किन के नाम मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में आज किंग से मिलकर के फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करेंगे। और भाई उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे अटकलें लगाई जा रही हैं, मैं आपको बता दूं भाई, मैंने तो साफ इनकार कर दिया मैं फ्री नहीं हूँ, बस साफ बात है कहीं करना। मैं मेरे भरोसे मत रहना प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कैबिनेट का निर्माण कीजिए और फिर भाई हम उन्हें खबरों में चर्चा में लाएंगे। और क्या कुछ है भाई आज की समाचारों में, गंभीर हो जाइए, लेट्स सीरियस होकर के सुनाते हैं आपको आज के समाचार। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। शुरुआत करें फीफा वर्ल्ड कप से। हो गया भाई ये इतने दिनों तक चलने वाला मेला जो है उसका समापन हो गया कल। बड़ा जबरदस्त मैच था फाइनल का, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जो रोचक मुकाबला था वो तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। 10 गोल एक ही मैच में हुए। इसके अलावा जो उपलब्धियां इस वर्ल्ड कप मुकाबले की, फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट जीतकर इतिहास रच दिया है। ये वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल दागकर अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहे। सेमीफाइनल तक एम्बापे और मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ बराबरी पर थे। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में एम्बापे ने 2 शानदार गोल दागकर अपने गोलों की तादाद जो है वो 10 तक पहुंचा दी। और इससे पहले एम्बापे ने 2022 कतर वर्ल्ड कप में भी 8 गोल करके गोल्डन बूट जीता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड की टीम को भी भाई, तीसरे स्थान के लिए उन्होंने फ्रांस को ही हराया। हालांकि फ्रांस तीसरे स्थान के मुकाबले में हार के चौथे नंबर पर रहे, लेकिन एम्बापे का प्रदर्शन जो है पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। एक और खेल का चर्चा करें भाई, क्रिकेट का। क्रिकेट में भी भाई बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था। इंग्लैंड ने भारत को हराकर 2-1 से ये वनडे सीरीज जीती, लेकिन रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलों पर शुभमन का एक स्टेटमेंट आया है। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भाई कितने बनाए थे, 387 रन बनाए थे। बहुत बड़ा स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में 387 का। लेकिन भारतीय टीम भी भाई कम नहीं थी, उन्होंने 7 विकेट पर 360 रन बनाए, 27 रन पीछे रह गई टीम। लेकिन प्रदर्शन भाई रोहित शर्मा का और विराट कोहली का और भी कई खिलाड़ियों का बहुत अच्छा रहा। मैच जीता, क्रिकेट जीता और साहब बहुत अच्छा प्रदर्शन जीता इसमें। शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की चर्चाओं पर कहा कि उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मीडिया में आया है ये बयान सुनने को, लेकिन टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। भाई अगर आपके रेडियो सेट पर ये थोड़ी सी गूंज सुनाई पड़ रही हो तो उसके लिए क्षमा करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा हेडफोन है लीक ना हो, लेकिन हो रहा है साहब, इसे और कम करें। लीजिए दूसरी खबरें। भारत से आने वाले समाचारों में काकरोच जनता पार्टी की ओर से आज शांतिपूर्ण संसद मार्च का आह्वान किया गया था, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी। और इसी बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहले से ही एक ट्रक खड़ा किया हुआ है पत्थरों से भरा हुआ। दिल्ली पुलिस को कहते हैं शर्म आनी चाहिए, जंतर मंतर पर पहले से ही एक ऐसा ट्रक खड़ा किया हुआ है। एक टूटी हुई वैन रखी गई है, जल्द ही मोदी मीडिया ऐसी खबरें चलाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वैन में तोड़फोड़ की। भाई ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही ये खबर भी आ रही है काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की ओर से आज का शांतिपूर्ण संसद मार्च जो है उसकी इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए दीपके को पुलिस उठाकर ले गई है। और इसके अलावा दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 सदस्यों नेहा, अमीन और मनीष ने 23 दिनों तक चली भूख हड़ताल आज खत्म कर दी है। 23 दिनों तक भाई भूखे रहने के बाद आज बहुत बड़ी तादाद में हालांकि लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए भाई कई गिरफ्तार हुए हैं लोग। और ये भी खबर आई है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो इस प्रदर्शन को लेकर के भाई और भूख हड़ताल को लेकर के कई दिनों से चर्चा में रहे हैं, पता चला है कि सफदरजंग अस्पताल ने उनकी जो हेल्थ अपडेट जारी की है उसके अनुसार वांगचुक की जरूरी मेडिकल जांच के नतीजे सामान्य आए हैं। और सफदरजंग अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि सोनम वांगचुक का इलाज ठीक तरीके से चल रहा है, डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन आज भी भाई संसद का भारतीय पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है लोकसभा उसके सत्र के पहले दिन आज विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। यानी आज से सेशन शुरू हुआ लेकिन शुरू में ही हंगामा और उसके बाद भाई कार्रवाई स्थगित हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने के महज 12 मिनट बाद ही लगातार शोर शराबे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने ये कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी।

0: ये भी बता दें भाई, खबर अभी अभी आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज अपना अनशन, अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। समाचार एजेंसी की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में अभिजीत दीपके ने अपनी हंगर स्ट्राइक, अपनी भूख हड़ताल खत्म की है और वो खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: इशारा फिल्म का गीत, और भाई इशारे इशारों में ये गीत कई बार हमने सुनवाया है और हमारे श्रोताओं को भाया है। वाल धीरे धीरे हम खबरों की ओर बढ़ रहे हैं, पर उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो हम आपको रेट बताते हैं। भाई LemFi वाले एक पाउंड के बदले इस समय दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 129.84 रुपीस, पाकिस्तानी 374.23, श्रीलंकन 452.43, बांग्लादेशी टका 165.95 और अफगानी 88.85।
1: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 96.06 pounds per gram. इसे भाई सर्राफा जो बाजार है उसकी भाषा में कहते हैं सोना लुढ़का, कुछ कीमतें नीचे आई।
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
7: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
6: डेजर्ट सफारी,
7: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: भाइयों बहनों खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में. इंडिया फेमस छोले भटूरे, अब मैच मेड इन हेवन. फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो. मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2-6HA. बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org, assuming you want to get noticed.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। और भाई इस समय हम आपको सुनाते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन। आज के चिंतन में हम जो आलेख शामिल कर रहे हैं वो हमें साउथ हॉल में श्री राम मंदिर के प्रेसिडेंट जय शर्मा ने भिजवाया है। जय शर्मा और उनकी धर्मपत्नी विभा शर्मा कहते हैं कि आज का चिंतन आप हमारी स्वर्गीय माता जी के नाम कर दीजिए। माँ शब्द भाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि एक एहसास है। उस रचनाकार का जो सृष्टि को रचता है, माँ भी तो वैसे ही अपनी संतान की रचना करती है। कहते हैं हमारी माता जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में सदगति प्रदान करें। और भाई इतनी लंबी उम्र 98 यानी 2 वर्ष और जीती तो शतक लगाने वाली थी माता जी श्रीमती शकुंतला कौशल जी। लेकिन भाई इस दीर्घायु के लिए हम लोग, हमारे समाज में जो लोग हैं वो मौन नहीं करते हैं, शोक नहीं प्रकट करते, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं उनके जीवन को। 98 वर्ष के इस दीर्घ काल में उन्होंने परिवार को, समाज को, अपने आसपास के लोगों को बहुत कुछ दिया। ज्ञान का भंडार थी माता जी। तो जय शर्मा कहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार तो कल किया जाएगा हैनवर्थ क्रेमेटोरियम में दोपहर बाद 12:40 पर, और उसके बाद हम श्री राम मंदिर जाएंगे। लेकिन उनका ज्ञान, उनका प्रकाश हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। जय कहते हैं कि चिंतन जो आज का है वो इस प्रकार है। आज का चिंतन,
1: चिंतन, चिंतन।
0: क्लास में टीचर एग्जाम ले रहा था, बच्चों को उन्होंने प्रश्न दिया, मां पर ऐसे लिखो, मां पर कुछ लिखो। कागज पर कलमे चलने लगे भाई, पेन से सभी बच्चे लिखने लगे, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठा, सोच में गहरा डूबा हुआ था। उसकी आंसर शीट बिल्कुल कोरी थी, वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। टीचर ने देखा ये बच्चा किसी सोच में डूबा है, एग्जाम का समय निकला जा रहा है और ये कुछ नहीं लिख पा रहा है। टीचर ने पूछा, क्यों बेटा, मां पर ऐसे नहीं लिख सकते? अरे मां पर कुछ तो लिखो। बच्चा गंभीर होकर कहता है, सर मैं मां पर क्या लिखूं, मां ने तो खुद मुझे लिखा है, मैं उसकी रचना हूं, वो रचयिता है, उसने अपने शरीर से मेरा शरीर बनाया है, मैं मां से बना हूं। बस सोचता हूं यही लिख दूं। ये बात सुनकर के भाई टीचर का तो मन गदगद हो गया, कहता तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम तो पास हो गए, मां के इस स्वरूप को पहचानो। मां कहते हैं कि ईश्वर सब जगह मौजूद नहीं रह सकता था, भाई है तो सर्वव्यापक, लेकिन उसका एहसास हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए परमात्मा ने मां को बनाया। ईश्वर का ही स्वरूप है। अब ईश्वर को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन मां तो वो पहली प्रतिमूर्ति है जिनका जन्म लेते ही हम दर्शन करते हैं, जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, जीना सिखाती है। दुनिया दिखाई माँ ने हमें, दुनियादारी सिखाई माँ ने हमें। गरिमा में माँ है, महिमा में माँ है, अधूरा बिना माँ के परमात्मा। हाँ माँ शब्द लिखें, परमात्मा लिखेंगे तो माँ के बिना नहीं लिखा जाएगा। परमात्मा, 2 बार माँ आता है इसमें। बच्चा कहता है ईश्वर को हमने नहीं देखा, पर माँ को देखा है, उसका स्वरूप बिल्कुल परमात्मा के जैसा है।

आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे, माँ की ममता को प्रणाम करते हुए। आज के चिंतन के लिए हमें आलेख भेजा ऑस्ट्रेलिया से जय शर्मा और विभा शर्मा ने। जय शर्मा साउथ हॉल में श्री राम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और कहते हैं कि ये संस्कार भी माने ही दिए हैं कि जो हम धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर सेवा करते हैं। कहते हैं बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। भाई आज का चिंतन, आज का विचार, जय कहते हैं हमारी स्वर्गीय पूजनीय माता श्री को समर्पित। माताजी 98 बरस की उम्र में इस सप्ताह ब्रह्मलीन हो गए, भगवान में विलीन हो गई, उनका निधन हो गया है। और कहते हैं कल हम अश्रुपूरित आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देंगे। कल हैनवर्थ क्रेमेटोरियम में दोपहर बाद 12:40 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद साउथ हॉल के किंग स्ट्रीट स्थित श्री राम मंदिर में हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जहां प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। जय भाई, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और क्योंकि आपकी पूजनीय माता श्री का आशीर्वाद लेने का हमें भी अवसर मिला था तो हम प्रणाम करते हैं उस हस्ती को। भर भाइयों, याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: ये संदेश हमेशा की तरह वत्सला जी आपने लिख के भेजा है कुछ बहुत अच्छा। रमीला जी आपका संदेश मिला महेंद्र पटेल क्रोएडन से। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। शहर पम्मी स्लाव में है महेंद्र बरजारिया हैरो से। जगदीश जी बुशी से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वियना ऑस्ट्रिया से अनिल सोनी आज के चिंतन की प्रशंसा कर रहे हैं। रानी स्लाव में सुन रहे हैं अरुणा और भूपेंद्र पटेल, थैंक यू वेरी मच आपके संदेश के लिए। राजेंद्र राज जी, हरविंदर जी कहती हैं मॉर्निंग रवि जी ब्रिलियंट थॉट आज का बहुत अच्छा लगा। भरत गंगाराम जैस्मीन एज यूजुअल आपका संदेश बता रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रकाश सूथर नॉर्थोल्ट में है। प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच। हंसा वोरा हिना सलमा मेडस्टोन कैंट में सुन रही हैं। आंटी जी आपका आशीर्वाद भी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। हेतल सोलंकी शोभना राय मिलन भाई आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप ही शक्ति हैं। इस रेडियो की आवाज, इसका अंदाज, इसके गीत संगीत सब कुछ आप ही की बदौलत है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई पैसे अपनों को भिजवाएं भारत में, अच्छा रेट मिल रहा है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 129.45 इंडियन रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप यू कैन सेंड द मनी। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express... a few things, because it's time to move on from that ex.
3: Goodbye.
2: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स हरी ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट क्वालिटी फूड्स क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं Smart solution for your business.
3: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
4: Rich, authentic taste every single time.
3: Royal Chai, brewed for business.
4: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
6: You have to be really dedicated to be able to
7: become a
6: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
8: True.
6: Whether it's at home or whether it's family.
5: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
9: Hum se sasta kahin nahi mil sakta.
10: Travel Hub.
9: At all protected.
5: Leica. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.

हमारे रेगुलर लिसनर विजय जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कहते हैं हमें भी हमारे जन्मदिन पर आशीर्वाद देना। ले लो भाई, ले लो, लूट लो, युग युग जियो, लंबी उम्र हो, जुड़े रहें हमारे साथ आप। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स।

0: और बहनों भाइयों, लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से एक और सूचना हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि वी आर द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी, द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27th September. ए स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM. ये स्टूडेंट्स के लिए भाई प्री शो है, लेकिन उसके बाद द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 टू 9:30 PM. तारीख 27 सितंबर, स्थान ओवो वेम्बली अरीना, नोट कर लीजिए भाई. क्रिएटेड बाई सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन फालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम. The English language production brings the Ramayana to life. And with 4 chapters, a bespoke event, song soundtrack and a full international cast. Tickets ke liye note kijiye www.diwalistory.com. diwalistory.com apni ticketon ki vyavastha kar lijiyega. To ye thi suchna saab.
1: Ye hai Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Barasti aankhon ki dhaar, kiske naam karun? दर्द का अनमोल उपहार किसके नाम करूं?

0: संगीत के साथ कोई संदेश है तो वो मुंह से बोल के बताना है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आना। बस संदेश ये है कि जो हमारा लाइका एक्स्ट्रा है ना, उसका नया एपिसोड आया है, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एपिसोड 25 में हम अपनी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके साथ की बात करते हैं। कैच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद डोनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका रूबी रजा, रेडियो वाली एंड अनिसा नासिर। क्या है कि भाई रेडियो प्रेजेंटर्स के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, कितना संघर्ष होता है भाई इस काम के पीछे, जो यहाँ माइक्रोफोन के सामने आकर के हम आप तक पहुँचते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा पॉडकास्ट एपिसोड 25 लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife. And little Freddy.
3: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
4: Yeah, Leica Gold.
5: Leica Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
11: Nazar se nazar.
10: Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Center. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
13: London, good news! Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold.
7: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
15: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड।
0: जीने को तो तेरे बिन भी जी रहे हैं हम, पर जिंदगी कहां है, जीने वाली बात कहां है।

क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर साडे कोलों, सानू दस दिओ होया की कसूर साडे कोलों। घड़ियां गिनते सुबह बीती गुजरी रातें तारे गिन, जज्बाए इश्क की उम्र पड़ी है जख्म जुदाई है कम सिन। बाती बिन अकेला दीपक रात अकेली चंदा बिन, फूल नहीं तो चमन अधूरा सूरज ना हो तो कैसा दिन। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ।

0: बैक टू बैक संगीत सुना आपने, पहला गीत किशोर दा और रेखा जी की आवाजों में था फिल्म कश्मकश से, और ये गीत गंगा जमुना सरस्वती से लिया गया था, लता जी की आवाज थी नाचेगी सरस्वती। और हमारा भाइयों प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम भाग में मैं रवि शर्मा आपको फिर से स्वागतम कहता हूं भाई। अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो 2 घंटे का कार्यक्रम आप मिस कर चुके हैं। अब एक भी गीत एक भी बात नहीं छूटनी चाहिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मनोरंजन प्रोग्राम दोपहर बाद 1 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। आइए जाने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यू के क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का इस समय।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 129.45 rupees for £1. एक पाउंड के बदले 129.45 रुपए दे रहे हैं, ये रेट चल रहा है। आप ब्रांच में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पैसे भिजवा सकते हैं, या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनों को पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: बहुत सारे दिलों की धड़कन, बहुत सारे लोगों की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी सप्ताह हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और उनकी बहुत सारी फिल्मों के गीत गूंजेंगे इस टाइटल के तहत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और भाई ये गीत सुनकर आपको लगेगा कि आप किसी मेले में या किसी तीर्थ स्थल पर आ गए या कहीं मौज मस्ती भरे माहौल में समा गए हैं। ऐसे में भाई नाच गाना बैंड बाजा स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, खेल खिलौने होते हैं और भाई कहीं कहीं होते हैं मुकाबले खेलों के ही नहीं, दिमाग के भी, जानकारी के भी, हिस्ट्री के भी और पहेलियों के भी, सहेलियों के भी।

0: बेचारा
1: नहीं
0: दीवाना,
1: दीवाना नहीं अनजाना।
2: अनजाना फिल्म की थी ये पहेलियां भाई ये बुझारत लता मंगेशकर मुकेश साथियों की आवाज।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई भाइयों कुछ एक जानकारी आप तक पहुंचाते चले याद दिलाते चले कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com। तो साहब एक ये भी बताना है कि मेला 2026 लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला और भाई उसकी धूमधाम से जो तैयारियां चल रही हैं उनके साथ भी हम आपको जोड़े रखेंगे, जुड़े रहेंगे।
5: ये है लाइका गोल्ड।
6: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

0: रोज मुसीबत यहाँ नहीं। दिल्ली अगर भाई हिंदुस्तान का दिल है तो मुंबई भारत का व्यापारिक केंद्र है और मनोरंजन की दुनिया भी है मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ। अब मुंबई नहीं, अब मुंबई है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel वालों का वो संदेश एक बार फिर दोहरा दूं, आपको याद दिला दूं। भाई Southall Travel वाले कहते हैं कि वो जो एक संदेश था ना पहले, वो दे वांट टू टेल यू दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस, वो मशवरा वापस ले रहे हैं अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कहते हैं कि अब भाई खुल के घूम कर आइए दुबई में और कंपेटिटिव दुबई डील्स के लिए Southall Travel का नंबर मिलाइए 0208-574-8410। At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Don't miss the fight before the fight. On July 25th, Anthony Joshua must survive the here and now.
3: Everything I've gone through only makes the goal clearer.
4: AJ is back. I've never seen him more focused.
3: The fire's still in me.
2: 20 wins, 20 knockouts. Prenger is not an opponent you look past. Anthony Joshua must survive the present.
5: This fight is a huge risk.
3: I'm back. July 25th, Joshua versus Prenger, live, exclusively on DAZN.
6: Ye hai Leica Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
9: Goodbye.
8: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
10: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Today's Tea Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: करेंसी रेट्स जानना चाहते हैं भाई, हम बताते हैं आपको। अगर पैसे अपनों को भिजवाने हैं तो नोट कीजिए भाई, इस समय रेट अच्छा चल रहा है। और कितना मिल रहा है एक पाउंड के बदले? वेल, अकॉर्डिंग टू लम्फाई, भारतीय मुद्रा में 129.72 रुपीस, पाकिस्तानी 374.4, श्रीलंकन 452.89, बांग्लादेशी टका 166.2 एंड अफगान एंड अफगानी अफगान अफगानी एक पाउंड के बदले 88.87।
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: What gold ki kare? तो साहब, कभी उछाला तो कभी क्या ढलान, हाँ लुढ़की, वैसे भाषा में बोलते हैं सोने की कीमतें लुढ़की ढलान पर, ऊंचाइयों पर, इस समय ढलान पर है साहब। द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 96.09 पाउंड्स पर ग्राम।
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: का वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: इस गीत के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है साहब, इतने बार लोगों ने सुना है, इतना इसको चुना है और अपनाया है, गुनगुनाया है, वही ये गीत जैसे ही धुन सुनाई पड़ती है समझ जाते हैं। लेकिन ये गीत जिन पर पिक्चराइज हुआ किसी ज़माने में, भाई वो जुबली कुमार कहलाते थे, आज उनका जन्मदिन है तो क्यों ना उन्हें याद करें। 20 जुलाई 1929 में जन्मे थे जुबली कुमार। जुबली कुमार उन्हें इसलिए कहते थे कि भाई उनकी बहुत सारी फिल्में जो है वो 25 वीक से यानी 25 हफ्तों से ज़्यादा चली, और सिल्वर जुबली मनाने के कारण राजेंद्र कुमार तुल्ली जो जुबली कुमार कहलाए। इनका जन्म तो हुआ था सियालकोट में, लेकिन पार्टीशन के बाद ये भारत आ गए और साहब जो पेशा जो व्यवसाय इन्होंने चुना अभिनय का छा गए, और एक ज़माने में शायद सबसे महंगे एक्टर होते थे ये फिल्मी दुनिया में।

0: और इससे पहले कि महबूब नाराज होकर भाई लौट जाए, हम इस गीत को समेटते याद दिलाते हुए कि आज राजेंद्र कुमार का जन्मदिन है साहब, याद करते हैं उन्हें, राजेंद्र कुमार तुली। कुछ फिल्मों के बहुत संवाद, उनकी अभिनय कला आज याद आती है। श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत हमने सूरज फिल्म से सुनवाया। और अब थोड़े से संदेश सुनवा के बता दूं कि धीरे धीरे कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल at all protected.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back, a better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Mum, I'm outside.
7: Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: यार कई बार मुझे अपने गांव के छोले भटूरे याद आते हैं। वही स्वाद, वही खुशबू।
14: तो रुक क्यों रहा है? वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउस लो के बीकानेर वाला में।
13: सच?
14: अरे बिल्कुल। छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट, जैसे माँ के हाथों का बना हो।
11: बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, अब हाउस लो हाई स्ट्रीट में। आज ही विजिट करो।
1: Up next, Bally Brumbats with Gold Afternoons on Leica Gold.
15: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: लीजिए साहब, इससे पहले के कार्यक्रम के समापन का ऐलान हो, आपको बता दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और अभिनेता शामिल हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। वो भाई कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहते हैं, अभिनय के लिए तो अच्छे अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साहब आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर तोहफे में उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा गीत दें। तो भाई गीत तो आपके लिए भी लगाना है क्योंकि आप में से भी बहुत सारे श्रोताओं का आज जन्मदिन है, तो जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम उन्हें मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहना चाह रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिए हजारों।
16: Across Greater London, this is Like a Gold, 10:35 AM, DAB and on.
0: लाइका गोल्ड भाई, ये जो है संदेश थोड़ा सा पहले बज गया। हम जो गीत सुनवाना चाहते हैं आपको वो ये वाला है कि आपका जन्मदिन जीने वाले मुस्कुरा के जी, गुनगुना के जी।

0: खबर किसको कि कल क्या हो।
1: दो दिन की है जिंदगी भाई, जीने वाले कर्जा उठा के जी, दूसरों का माल पचा के जी, खा के जी, और फिर शहर छोड़ के भाग जा के जी। ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम और खेलें कूदें अय्याशी करें, कोई और बात नहीं पूछेंगे हम। ऐसा नहीं है भाई। हंसने हंसाने के लिए हम कुछ भी कहें, लेकिन हमारी चिंतन की बातें याद रखना, बाकी हंस के भूल जाना। आज जूही बब्बर भी अपना जन्मदिन मना रही है। लखनऊ में जन्मी थी 1979 में आज के दिन। और भाई गीत उन सब के लिए जिनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क।

भाई किरित भट्ट साहब, आप जो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं वो हम यहाँ सुन पाने में या खोल पाने में असमर्थ हैं। आप लिख करके जो भी भेजेंगे वो लिखा हुआ हम जरूर ब्रॉडकास्ट कर देंगे, आपका बोला हुआ जो शब्द है वो यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि ये उस तरह से ये इक्विप्ड नहीं है स्टूडियो। तो लिख करके भेजिएगा 07424232323, दैट्स आवर नंबर स्टूडियो का। रेडिंग से नमिता जी आपका संदेश मिल गया है, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रही हैं, जुड़ी हुई हमारे साथ, थैंक यू। और बहन भाइयों, प्रोग्राम का आखिरी गीत आपसे इजाजत लेने के लिए और ये भी याद दिलाने के लिए कि बाली ब्रह्म भट्ट विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज। हमारी आपकी मुलाकात कल 10 बजे की खबरों के बाद। हैव ए सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

Both songs are amazing. लेकिन आपने कुछ नोट किया इन दो गानों के में? The Singers. जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार तुली, जुबली कुमार इनका दूसरा नाम. One of the most dominant and commercially successful superstars. 80 plus films in 40 plus years. That's right. इन्होंने किए थे. 20th July 1927 में सियालकोट में जन्मे हुए. Passed away at the age of 71 on 12th of July 1999 in Mumbai. Hence, it is his 97th birth anniversary. He died at the age of 71. He died a day after his son Kumar Gaurav's 43rd birthday in 1999. Kumar Gaurav's birthday, 11th July. He passed away 8 days before his 72nd birthday. His wife, Shukla Kumar. 3 children, including Kumar Gaurav, जिनको इन्होंने बड़े पैमाने से लॉन्च किया था. अब एज एन एक्टर, अ वेरी इंटेंस सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड रोमांटिक रोल्स इन्होंने अदा किए दैट डीपली रेजोनेटेड विद द फैमिली ऑडियंसेस. अब इनकी करियर देखा जाए तो शुरुआत तो ऐसे की थी जैसे कि डेब्यू अपीयरेंस में उनका नाम ही नहीं था, अनक्रेडिटेड ऑन द स्क्रीन. दैट वाज फिल्म पतंगा 1949 की. उसमें ही इज इन द फिल्म बट ही इज अनक्रेडिटेड इन द डेब्यू परफॉर्मेंस. फिर 1950 में एक दूसरी फिल्म आई जोगन एंड ही गॉट क्रेडिटेड ऑन द स्क्रीन अलोंगसाइड दिलीप कुमार साहब. फिर 1949 से 1955 की ये मैं कहानी सुना रहा हूँ उनके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे. ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू मुंबई फॉलोइंग द पार्टीशन एंड इनिशियली वर्क्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू एच एस रवाइल बिफोर लैंडिंग हिज ब्रेक थ्रू एक्टिंग रोल इन द हिट मूवी वचन, 1955 की मूवी. फिर 1957 में एक ब्रेक थ्रू मिला, वहाँ स्टारडम भी मिला एज द सन ऑफ नरगिस इन महबूब खान्स ऑस्कर नॉमिनेटेड एपिक फिल्म मदर इंडिया, ऑल्सो स्टारिंग सुनील दत्त, राजकुमार. व्हाट अ फिल्म दैट वाज. एंड देन इन द लेट 1950s एंड 1960s द गोल्डन पीक एरा. जी हाँ, he dominated the box office with timeless romantic dramas and music.

0: Chronicles, धूल का फूल 1959 की, जो यश चोपड़ा की डेब्यू डायरेक्शन थी। जी हाँ, पहली फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी उनके भाई के प्रोडक्शन के अंदर, बीआर चोपड़ा। गूंज उठी शहनाई 1959, मेरे महबूब 1963, तिलक मंदिर 1963, संगम 1964, आरजू 1965, सूरज 1966, अरे मैं भूल गया 1960 में तो दिल अपना और प्रीत पराई, और 1970s में ही ट्रांजिशन्ड इनटू कैरेक्टर रोल्स। द फोकस वाज बिहाइंड द कैमरा, क्यों? Because he wanted to launch his own production house. जी हाँ, ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसा खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत एक्टिंग फ्रॉम 1949 टू 1998 इन 49 years, एन एक्टर, अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। उनकी फिल्मों में देखा जाए तो एज अ प्रोड्यूसर 1970 में द ट्रेन फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी। It was directed by Ravikant Nagaich. Phir 1981 mein Love Story. It was directed by Rahul Rawal to launch his son Kumar Gaurav. And that was also a launch pad for Vijayata Pandit. And then 1983 mein Love Story ke baad Lovers, jiske director the Bharati Raj. Matlab ye filmein sari unhone produce ki thi. 1986 में फिल्म नाम, जिसमें संजय कुमार भी थे विद कुमार गौरव ऑफ कोर्स, महेश भट्ट वाज़ द डायरेक्टर। एंड 1991 में फिल्म जुर्रत, जिसमें डेविड धवन, अभी उस फिल्म में स्क्रीन प्ले वाज़ आल्सो बाय राजेंद्र कुमार एंड द फिल्म वाज़ एडिटेड बाय राजेंद्र कुमार एंड डेविड धवन। लास्ट टाइम ऑन द स्क्रीन 1993 में फिल्म फूल उन्होंने प्रोड्यूस की थी, Singitam Srinivasan Rao, that was the director in that film. 1994 mein ek English film jo thi Jungle Book, he was the co-executive producer. It was produced in association with Walt Disney Pictures, spearheaded by Rajendra Kumar's son-in-law Raju Patel. Ab jab Rajendra Kumar got nominated फॉर फिल्म फेयर अवॉर्ड्स, जैसे कि 1964 में फिल्म दिल एक मंदिर, उसमें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, अवार्ड नहीं मिला, तो विनर कौन थे? सुनील दत्त जी थे फॉर द फिल्म मुझे जीने दो, ही वॉज ठाकुर जरनैल सिंह इन दैट फिल्म, तो सुनील दत्त को अवार्ड मिला था। 1965 में फिल्म थी आई मिलन की बेला, जिसमें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला लेकिन अवार्ड नहीं मिला, तो किसको मिला? दिलीप कुमार साहब को मिला फॉर लीडर फिल्म, एज एक्टेड एज विजय खन्ना। फिर 1965 में फिल्म संगम याद है? किसको नहीं याद, ही वॉज एक्चुअली चोजन एज द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब इनको दिया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, इट वाज नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन के बाद अवार्ड किसको मिला? नाना पालसीकर, हु एक्टेड एज जॉनी इन शहर और सपना। 1966 में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन फिल्म आरजू। व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड व्हाट ब्यूटीफुल एक्टिंग। अवार्ड नहीं मिला तो किसको मिला? सुनील दत्त जी को मिला एज गोविंद लाल इन फिल्म खानदान। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, नो डाउट अबाउट इट। सो ये है राजेंद्र कुमार जी की जो कहानी। मैंने अलग अलग सिंगर्स चूज किए, जैसे कि रफ़ी साहब ने गाया ऐ नरगिसे मस्ताना, वो थी फिल्म आरजू। दूसरा गाना जो था जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दैट वॉज लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर। नेक्स्ट गाना होगा मुकेश जी का गाया हुआ विद सुमन कल्याणपुर, जो पिक्चराइज हुआ राजेंद्र कुमार जी के पे। एंड देन किशोर कुमार जी पे एक ही गाना, दैट वॉज द ओनली सॉन्ग ही सैंग फॉर नौशाद साहब, एंड राजेंद्र कुमार जी के लिए ये गाना गाया था। वहाँ काफ़ी अनबन थी किशोर कुमार जी के साथ उनकी, वो कहानी मैं आपको थोड़ा झलक सुनाऊंगा, क्योंकि उनकी बर्थडे एनिवर्सरी है. वी डोंट वांट टू टॉक बैड थिंग्स अबाउट हिम. हुस्ने जाना इधर आ, वो तो फिल्म साथी का गाना जो है वो भी इतना खूबसूरत है. आप सुनते रहिएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट, ब्रिंगिंग यू सॉन्ग्स ऑफ राजेंद्र कुमार टुडे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
11: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. आज ही एक्शन ले 02089072444.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
16: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: You're listening to the tribute of Rajendra Kumar on his 97th birth anniversary on Laika Gold. ये गाना था फिल्म साथी का, जहाँ पे नौशाद साहब ने 18 साल बाद मुकेश जी को गवाया था ऑन राजेंद्र कुमार।

0: कितनी खूबसूरती से ये गाना बना। नौशाद साहब ने संगीत दिया फिल्म साथी का, इसमें वैजयंती माला भी थी। राजेंद्र कुमार जी उनके गाने आज पेश कर रहे हैं, ये मुकेश जी ने गाया। मैं अलग अलग सिंगर्स को ला रहा हूँ। नेक्स्ट गाना होगा किशोर दा पे, लेकिन कुछ ड्रामेबाजी हुई थी उसके पीछे। यहाँ भी ड्रामेबाजी तो हुई थी, 18 साल के बाद मुकेश जी को गवाया था, क्योंकि फेवरेट सिंगर राजेंद्र कुमार जी के रफ़ी साहब थे, एंड राइटली सो, बिकॉज सारे गाने हिट हुआ करते थे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बात ऐसी थी कि जैसे मैंने कहा, 18 साल के बाद इन्होंने मुकेश जी को गवाया था, लेकिन द सॉन्ग वेंट वेरी वेल ऑन राजेंद्र कुमार एंड ही क्वाइट एग्रीड आफ्टरवर्ड्स एज वेल। अब सभी जानते हैं कि किशोर कुमार कितने खुशगवार और मजाकिया इंसान थे। व्हाट वी माइट नॉट नो इज वो कितने उसूलों के पक्के और स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। अभी कुछ किस्से दोहराता हूँ मैं इसके बारे में। जैसे कि जब फिल्म गीत, 1970 की फिल्म थी गीत, बन रही थी, तब कल्याण जी आनंद जी को एक या दो गाने किशोरदा को देने थे। हीरो राजेंद्र कुमार उस फिल्म के थे, जो सिर्फ रफ़ी साहब को ही पसंद करते थे। सो नतीजा ये हुआ कि कल्याण जी आनंद जी को अपना विचार बदलना पड़ा और गीत फिल्म में किशोरदा ने कोई गाने नहीं गाए। दो गाने सुपरहिट फिल्म के थे, जो उस फिल्म के थे, जो मेरे मितवा रफ़ी साहब ने गाया और जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे। मतलब नो डाउट इट वाज अ म्यूजिकल सुपर डुपर हिट, वी कांट आर्ग्यू अबाउट दैट। 1971 में किशोरदा सैंग ओनली वन सॉन्ग इन आप आए बहार आई, एंड 1971 में सैंग वन सॉन्ग इन आप आए बहार आई। अब इन 1975 जब फिल्म सुनहरा संसार, 1975 की फिल्म थी, बन रही थी, तब म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद जी। अब अंटिल 1975 किशोर कुमार हैड नॉट संग एनी सॉन्ग्स फॉर नौशाद साहब। सो टाइम्स वर डिफरेंट, किशोर कुमार अपनी बुलंद पर थे और नौशाद जी की करियर वॉज अ बिट डाउन। सो हीरो थे राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, माला सिन्हा फिल्म में थे, और एक गाना किशोरदा ने आशा भोसले के साथ गाया, वो था हेलो हेलो क्या हाल है। जब फिल्म रिलीज हुई तब वो गाना आशा जी का और किशोरदा का ने जो गाया था वो फिल्म में नहीं था, तो उस गाने को हटा दिया गया और किशोरदा इतने नाराज हुए नौशाद जी पे, और उन्होंने फ़ोन कर दिया और कहा कि ये गाना क्यों फिल्म में नहीं है। नौशाद जी ने कहा, राजेंद्र कुमार जी आपके गाने के गाने से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हटा दिया गया। ही फेल्ट आपकी आवाज़ उन पे नहीं जच रही, क्योंकि रफ़ी साहब की ही जचती है। दिस वॉज इट। किशोरदा वॉज एक्सट्रीमली अपसेट एंड डिसाइडेड नेवर टू सिंग फॉर राजेंद्र कुमार अगेन। कई बार उनको ऑफर दी गई बट ही डिक्लाइंड। एक बार 1979 में एक फिल्म थी बिन फेरे हम तेरे, विनोद मेहरा और आशा पारेख जी थे उसमें। उसमें किशोरदा को गाने के लिए कहा गया, एज सून एज ही फाउंड आउट के राजेंद्र कुमार थे इस फिल्म में, ही रिफ्यूज। तो म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी ने कहा कि देखो ये बैकग्राउंड सॉन्ग है, इट्स नॉट पिक्चराइज्ड ऑन राजेंद्र कुमार। सो ही एग्रीड एंड द टाइटल सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड बिन फेरे हम तेरे, अदरवाइज ही वुडंट हैव संग इट। व्हेन राजेंद्र कुमार वॉज लॉन्चिंग हिज सन कुमार गौरव फॉर फिल्म लव स्टोरी, ही वॉन्टेड किशोरदा टू सिंग फॉर हिज सन, एंड किशोरदा फ्लैटली रिफ्यूज। ही सेड मैं गाना तो क्या, मैं उनको मिलना ही नहीं चाहता। तो आर डी बर्मन जी ने बहुत कोशिश की बट नो लक। इवेंचुअली आर डी बर्मन सजेस्टेड अमित कुमार, एंड किशोरदा ने कहा दैट आई डोंट माइंड, उस बच्चे की करियर बन रही है तो कुमार गौरव के ऊपर क्यों नहीं उसकी आवाज़ यूज़ की जाए। So he agreed. So this was the story, and the next song you're going to be hearing is that Kishore Kumar song which was sung with Asha Bhosle ji in film Sunehra Sansar but was not on the screen. Suniyega.
1: The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
0: If you are a nurse, a physiotherapist, occupational therapist or paramedic ready for a better work-life balance, Capita has hybrid clinical assessor roles across the Midlands. Expect office hours, no nights, every weekend off, a £39,500 starting salary and comprehensive training. Remote opportunities available. Search Capita Health Assessment Jobs.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Wake up to Kajalon Breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: With National Express, it's the summer of yes. The summer of possibilities. The summer of
4: next stop airport.
3: The summer of
4: absolute anthems.
3: And the summer of last minute plans. With over 100,000 one-way tickets for £7 or less, get out there and say yes to all of it. The summer of yes with National Express. Includes booking fee, online only. Travel before 30th of September 2026. Selected routes subject to availability. Terms online.
5: Gold Afternoons with Bali Brambert.
6: Bali Brambert
5: is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
7: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट travelhubworld.com.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact कीजिए कल्पेश पटेल on 0208-922-3344 24-hour line.

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

जी हाँ, मैंने गीता दत्त जी के बारे में बताना है आपको, और जो गाने मैंने चुने हैं वो हर एक अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने जो काम किया वो गाने मैं पेश करूँगा। पहला गाना था एस डी बर्मन जी के साथ, ये दूसरा गाना जो था ठंडी हवा काली घटा, मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना, दैट वाज विद ओपी नैयर। ओपी नैयर जी के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गीत गाए थे उनके लिए। और आगे जाते हुए

0: करियर। डिजास्टर नंबर 4 था 1958 में, जब गीता 28 साल की थी। एस डी बर्मन और ओपी नैयर ने बड़ी कोशिश की, दे अटेम्प्टेड टू वर्क विद गीता बिकॉज उनको उनकी आवाज़ पसंद थी एज अ मेन सिंगर ऑफ देयर कंपोजिशंस। शी कुड डिलीवर, शी कुड नॉट डिलीवर बिकॉज शी वॉज इन टू ड्रिंकिंग, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। सो आशा भोसले गॉट इन टू द सीन। Disaster number 5 tha after Gurudutt's death in 1964, she got into financial problems. Aise financial problems ke she had to take any kind of job she could get. And jaisa bhi gana usko milta tha, wo gaati rahi, stage shows karti rahi for any amount of money just to cope up with life. She had a bad time, but her drinking didn't stop. She got cirrhosis of liver. Disaster number 6. She passed away on 20th July 1972 at a very young age of 41. We are talking about Geeta Dutt. आज मैं उनके गाने सुनाने वाला हूँ, और गानों में हर एक म्यूजिक डायरेक्टर अलग है। जैसे कि मैंने आपको एस डी बर्मन वाला गाना सुनाया फिल्म सुजाता का, काली घटा छाए मोरा, एंड उसके बाद ठंडी हवा काली घटा गीता दत्त का गाया हुआ। अभी मिस्टर एंड मिसेस 55, कई बार गीता दत्त जी गाने नहीं गाती थी तो कोई और सिंगर गाता था उनके लिए, लेकिन पिक्चराइज उन पे होता था गाना। सो ज़रूरी नहीं है कि सारे गाने गीता दत्त जी के हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके ही गाने सुनाता रहूं। अब आगे जो गाना आएगा, दैट विल बी म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ हेमंत कुमार जी। फिल्म थी शर्त 1954 की। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे भाई भाई फिल्म का गाना, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन। एंड उसके बाद शंकर जयकिशन को कैसे छोड़ सकते हैं हम। शंकर जयकिशन के लिए उन्होंने गाया था एक, काफ़ी गाने तो गाए थे, लेकिन उनमें से एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा। एंड देन राउंड द सर्कल हम वापस आएंगे एस डी बर्मन के ऊपर और कुछ चटपटे गाने। एंड बिकॉज इट इज़ हर डेथ एनिवर्सरी, विल डू अ कपल ऑफ सैड सॉन्ग्स बिकॉज शी वेंट थ्रू द 6 डिजास्टर्स ऑफ हर लाइफ। गीता दत्त।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: Gold Afternoons.
5: Gold Afternoons.
4: Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
6: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
7: Goodbye.
6: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574841।
9: साफो ट्रेवल, Auto protected.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
5: Location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
7: In Dubai.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
11: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे।
12: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
11: यूरोप ना 3-9 दिवस टूर्स,
12: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
11: दर्शन पण अने यूरोप पण।
12: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
11: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
12: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
13: द वॉइस दैट डिफाइंड अ कंप्लीट एरा, द सॉन्ग्स दैट टच्ड मिलियंस। शी इज कमिंग टू लंदन soon.
14: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
15: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
16: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: से निराला। मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: ओके लॉरा, फ्रॉम द टॉप।
5: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
6: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
6: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: an ensemble. Number of singers here. The ensemble, of course, of legendary singers included Lata Mangeshkar, Mukesh Ji, Manna Day, Mahendra Kapoor, aur usme Geeta Dutt Ji bhi. Film, Jis Desh Mein Ganga Behti Hai. That was Shankar Jaikishan. So all different music directors, and in the end, O.P. Nayyar ne unko ye geet gawaya tha, which is the legendary song. एक गाना है प्रीतम आन मिलो, और प्रीतम आन मिलो मिस्टर एंड मिसेस 55 में गीता दत्त जी ने भी गाया, मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिरिक्स लिखी. दिस इज द लास्ट सॉन्ग रिमेम्बरिंग गीता दत्त.
1: Another huge giveaway is coming. Like

फटी फटी फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान हैवान हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश।

ये गाने दोनों हिट है और एक्टर, ओ माय गॉड, यू कैन से ही इज द फाइनेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड सिनेमा, नसीरुद्दीन शाह, ओवर 100 फिल्म्स। इनका डेब्यू था 1975 में फिल्म निशांत से। बोर्न ऑन 20th ऑफ जुलाई 1950 एंड नाउ ही इज 76 ईयर्स यंग। 3 नेशनल अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण। जी हाँ, इन्होंने क्या नहीं किया इंग्लिश फिल्मों में। हॉलीवुड देखो,

0: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन दिल्ली, वहाँ से भी इन्होंने तालीम पाई। ही वॉज बॉर्न इन बाराबंकी, दैट्स उत्तर प्रदेश। एक्टिव सिंस 1972, जी हाँ 72 की साल से वो एक्टिव थे, लेकिन डेब्यू था 1975 में। अगर हम इनके अवार्ड्स देखें तो देयर वाज आई थिंक नॉमिनेशंस में इनका नाम आता है फिल्म जुनून, जिसमें सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम आया था। और ही वाज नॉमिनेटेड इन 1983 फॉर फिल्म बाजार, फिर फिल्म कथा, उसमें सपोर्ट रोल के लिए इनका नाम था 1984 में। मंदी, वो भी एक खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, उसमें सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। 1985 में फिल्म स्पर्श, जी हाँ 1994 में फिल्म सर, उसमें सपोर्ट रोल के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। और नेगेटिव रोल जो इन्होंने किया था फिल्म मोहरा 1995 में, उसमें भी उनको नॉमिनेशन मिली थी। नाजायज, आपने अभी वो गाना सुना बरसात के मौसम में, एंड दैट पर्टिकुलर फिल्म नाजायज में 1996 में इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म चाहत, उसमें भी नेगेटिव रोल किया था। सरफरोश में भी नेगेटिव रोल किया था। इन सब फिल्मों में इनको नॉमिनेशंस दिए गए थे। चाइना गेट में ही गॉट द सपोर्ट, बेस्ट सपोर्ट एक्टिंग के लिए इनका नाम 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में इनका नाम नॉमिनेट किया गया था। 2007 में नेगेटिव रोल अगेन इन फिल्म क्रिश, उसमें भी नॉमिनेट किए गए थे। एंड देयर वाज अ ब्यूटिफुल फिल्म रिगार्डिंग अ बॉम्ब ब्लास्ट, दैट वाज ए वेंसडे, अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिल्म इन 2008, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने इतना खूबसूरत एक्टिंग किया था, लेकिन ही गॉट अ नॉमिनेशन नॉट एन अवार्ड। 2012 में द डर्टी पिक्चर, उसमें सपोर्ट अवार्ड उनको दिया गया था। ही डायरेक्टेड यूं तो यूं होता तो क्या होता, स्टारिंग इरफान खान, द लेट इरफान खान एंड कोंकणा सेन शर्मा, वो फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नसीरुद्दीन शाह, द ग्रेट एक्टर। उनके गाने सुनेंगे, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपन्स टू बी हेमा मालिनी जी। और आज मैंने ट्रिब्यूट किया था राजेंद्र कुमार जी का, तो राजेंद्र कुमार जी के साथ उनका एक रोल था गोरा और काला में, 1972 की वेरी अर्ली फिल्म। ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आई थिंक गाना मस्ट हैव बीन प्लेड सो लॉन्ग एगो ऑन लाइक अ गोल, लेकिन आज मैं उखाड़ के लाया हूँ। इसके बोल हैं, पर्दा रुखे रोशन से हो हटा दो, और वहाँ पे प्रेमनाथ सिंहासन में बैठे हैं और चाबुक लेके आते हैं राजेंद्र कुमार, यू नो, एंड ही वॉज इन अ डबल रोल इन दैट पर्टिकुलर फिल्म गोरा और काला, और उसमें डांस कर रही है हेमा मालिनी। इट्स अ ब्यूटिफुल डांस सीक्वेंस। 2023 फरवरी में ये गाना लाइका गोल्ड पे सुनाई दिया गया था, आज 2026 में वापस सुनाई देगा आपको फॉर आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 129.45. 129.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold. Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
2: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
1: सच?
2: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
3: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फर्ड।
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
11: हिमालय कारपेट से धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल, अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। Minar Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
13: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: making summer feel better. This is Laika Gold.
1: मैंने कहा था अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने संगीत दिया था राजेंद्र कुमार जी को, और ये है फिल्म आस का पंछी। उसमें सुबीर सेन जी ने गाया था। जी हाँ, सुबीर सेन एक्चुअली सैंग सॉन्ग फॉर दैट वाज पिक्चराइज्ड ऑन राजेंद्र कुमार। एंड इट्स गोना बी सैंडी शाह कमिंग नेक्स्ट ऑन लाइक अ गोल्ड and take you on his beautiful drive time. And not only that, on Laika Radio Midlands, it's the 377th day of Laika Radio Midlands, and you're gonna have Raj Badan on Laika Radio Midlands. Bali Brahmat ka kal tak namaskar.

0: आसमां को बढ़कर राही तो रुक।
1: संगीत शंकर जय की शनका विद राजेंद्र कुमार, आज का पंछी एंड द सिंगर सुबीर सेन। Somebody in Bushy, Jagdish Bhai, for you. Next song for Mrs. Sheikh.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
3: ऑन गोल्ड ड्राइव
4: फैबुलस साउंडट्रैक सत्य पे सत्य है स्पेशली दिस सॉन्ग इज ऑलवेज रियली नाइसली डन बाय किशोर कुमार एंड आरडी बर्मन दिस वाज ऑब्वियसली नॉट एन ओरिजिनल फिल्म इट्स अ रीमेक ऑफ सेवन ब्राइड्स सेवन ब्रदर्स एंड देयर्स ऑलवेज बीन रूमर्स दे आर गोना रीमेक दिस एंड आई थिंक सलमान खान एंड को वर लिंक्ड टू दिस एंड यू जस्ट थिंक देयर सम फिल्म्स लीव देम अलोन एंड दिस इज वन ऑफ देम जस्ट Whatever it was, whether you loved it or you didn't love it at the time, whatever it was, just some films shouldn't just be remade. I don't think they should touch this in any way or form. I think the soundtrack was fab of this movie. Really was good. Anyway, back to where we were. So, Jhoot Bola and the two statements, once again, this is your last chance to get involved, if you haven't already done so, is ants do not have lungs. They breathe through holes on the side of their body. That's the first statement. Second statement is plants and animals can and will adapt to climate change. What am I lying about?
3: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. Gold Drive with Sandy Shah.
5: Leica Gold.
6: Hi, मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 That's 0208-907-2444

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: This is Sandy Shah on Gold Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: We are very, very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to the Bay. Call Southall Travel for more competitive the Bay deals on 0208 574 8419. And don't forget, they are Atoll protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
5: Travelhubworld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: Travelhub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027
8: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kg, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. आज ही एक्शन ले 0208-907-2444.
11: Sona Tours, .co.uk, Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
12: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier. With our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply, T's and C's apply.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
0: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
13: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. We've still got delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 Church Road and Mandeville Road busy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. The A4020 Uxbridge Road is eased between the Parkway and Saddle Park. Continues to queue on the A406 North Circular Road in both directions with the Hangar Lane charity. A316 Chertsey Road easing westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout to the Tube, and severe delays on the Piccadilly line between Acton Town and Heathrow Terminal 5 and between Acton Town and Heathrow Terminal 4, and that's due to an earlier signalling problem at South Ealing. That's your latest traffic and travel.
2: लाइका गोल्ड, आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574-8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963 7557. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
5: London. Good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
8: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty, and total desi swad in char mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
0: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Leica Gold.
10: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: हमें जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड आप और हम मिलके मनाएंगे मोटिवेशनल मंडे टुडे 20 जुलाई एंड आपका और मेरा साथ रहने वाला है पूरे 3 घंटे के लिए, शाम 7 से लेकर 10 बजे तक। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे धुरंधर आ गए। अरे बाबा, आज तो वो वाले सारे धुरंधर आए हैं जो कह रहे हैं कि अब फुटबॉल खत्म। यू नो वो जो एक इमोजी होता है जो विंक करता है ना, वो वाला तो इतना ज़्यादा सबका यूज़ हो रहा है कि हाँ देखो हम आ गए अभी, यस दम देखो। ऐसे तो होना ही था कि बिल्कुल, आई नो आप लोगों ने मल्टीटास्किंग किया कि आप लोग फुटबॉल भी देख रहे थे और आप ये शो भी सुन रहे थे, सो तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी मल्टीटास्किंग की और आपने मेरा साथ निभाया। दैट्स लाइक अ टीम। ओके, तो आज ये टीम साथ में क्या करने वाली है, मोटिवेशनल मंडे तो मनाने वाली है, और क्या अश्विनी सवाल लाई है आप सबके लिए? बिल्कुल लाई है। अब वो सवाल आया कहाँ से, तो काम चोर इस फिल्म से। मैं जब छोटी बच्ची थी बड़ी शरारत करती थी, मेरी शरारतें पकड़ी जाती। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ये किसी ट्यूबलाइट्स और बल्ब के लिए ये गाई जाती थी एड्स। ओके, सो कामचोर फिल्म का ये गीत मुझे बचपन से बहुत पसंद है। राकेश रोशन की बड़ी वाली फ़ैन, क्योंकि उनका जो पफ निकलता था, उनके जो पफ तो नहीं, उनकी जो हेयर स्टाइल थी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। पर मेरा वो भरम उस दिन टूटा जब मेरी मम्मी ने मैगजीन में उनकी तस्वीर दिखाई और कहा कि देखो बेटा इनके बाल नहीं हैं। जब वो मुझे बता रही थी तो एक ज़िद्दी बच्ची की तरह मैं उनसे लड़ पड़ी। मैंने कहा नहीं, वो इतने अच्छे हैं, उनकी आँखें इतनी अच्छी हैं, उनके बाल इतने अच्छे हैं, तुम लोग क्यों ऐसे करते हो, वो सच में उनके बाल। एंड शी इज़ लाइक नो इज बॉल्ड, इज लाइक नहीं नहीं उनके बाल नहीं है। तो उस पर हमारी बातें हुई, थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सच में उनके बाल नहीं है। तो क्या आपके साथ में ऐसे कुछ हुआ कि कुछ रियलिटी चेक जब आपको मिला तो आपका दिल के टुकड़े हज़ार हो गए, जैसे मेरे साथ में हुआ था व्हेन इट केम्स टू राकेश रोशन की हेयर स्टाइल के बारे में। जो भी है लिख के भेजो, इट्स फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो नया वीक, कुछ नए से आप कुछ नए से हम, पर अभी ये नयापन पुराना नहीं होने वाला है। क्योंकि आप बोलोगे अब तो अश्विनी शाम के 7 बज गए, अब काहे का नयापन, आए हाय अश्विनी का शो तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो नयापन तो हुआ। वॉल्यूम आप रखिएगा क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक प्लेलिस्ट आपके लिए है। थियोरी लाई हूँ, क्या बात करते हैं बताइए, थियोरी सुनाएं कि गपशप करें, आप जो बोले सो। ओके,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगी 129 रुपए और 45 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI YONO मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: Ye hai. Like a gold. Like a gold. The Evening Show with Ashwini. Like a gold.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:22, इट्स 7:22। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है आपका अपना पसंदीदा शो द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप लोग सभी ने पूछा वीकेंड कैसा रहा, और जिन्होंने सैंडी के साथ जो मेरा बैंटर हुआ अगर वो मिस किया है तो मेरा वीकेंड बहुत अच्छा था बिकॉज आई हैड माई बॉलीवुड डांस क्लास का परफॉर्मेंस, एंड उसी परफॉर्मेंस में हमारे अपने राजवीर भी एक्ट भी कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। आई वॉज ओनली ऑन द डांसिंग पार्ट। आई हैड फन, बहुत बहुत मज़ा आया। तो काली तेरी चोटी पे हमने वी परफॉर्म्ड एंड आई एम लुकिंग अ पंजाबन कम्प्लीटली। यू कैन चेक दैट लुक ऑफ अश्विनी, पंजाबन लुक ऑन माई इंस्टाग्राम इट विच इज़ रेडियो वाली अश्विनी। एंड साथ में कल आई वॉज डूइंग ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा ओबी था फॉर रथ यात्रा, तो कई हमारे जो लिसनर्स हैं वहाँ पे मिले और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इन पर्सन मिलके। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू से अबाउट इस, आप में से कई लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा हम लोग हमारी एज बढ़ गई है, या आपकी कई लोग अपने मन की बातें जब यहाँ बताते हैं तो आप लोग ये बताते हैं कि कई चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी के कुछ ड्रीम्स कुछ इच्छाएँ वो आप पूरी नहीं कर पाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस डांस क्लास में मैं जाती हूँ वहाँ पर हमारी बैच की सबसे यंगेस्ट जो परफॉर्मर थी नहीं है, जो यंगेस्ट परफॉर्मर हैं गुलाब आंटी, शी इज़ 77 ईयर ओल्ड। ओके, इसलिए जो कोई भी मुझे कहेंगे कि नहीं बेटा अब हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, एक कुछ अपनी बकेट लिस्ट होती है हर किसी की, अगर उसको टिक करना चाहते हैं ना, आपकी इच्छा होगी ना तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ ला के देगी। कोशिश तो करिए, बताइए। जब तक आप अपनी मन की बात किसी को नहीं बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। इच्छा जाहिर कीजिए और एक बार ट्राई तो करके देखिए, कुछ चीज़ें रह ना जाए, है ना। एक तो ह्यूमन लाइफ मिली है, उसमें भी हम आधी चीज़ें छोड़ के बैठ गए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जिसकी वजह से हम दुखी होंगे, चीज़ें पूरी नहीं कर पाए। इट्स ओके, दैट वॉज मेंट टू हैपन, ओके इट्स पास्ट, चला के वो सब चीज़ें चली गई हैं, है ना। सो अगर आपकी इच्छा है तो देखिए, मैंने इसीलिए मुझे ये आप सबसे कहना था कि हमारी बैच के जो यंग परफॉर्मर है उनका एंथुसियाज्म देखने लायक था भाई। क्या मतलब बाकी सब भी क्या एंथुसियाज्म दिखाए जो हमारी आंटी ने बताया वहाँ पे। ओके, सोचिए इस बारे में एंड डेफिनेटली बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रैक आप सबके लिए, जो बोलने पर भी समझ में नहीं आता जिनको, लेकिन इशारों में समझ आता है, उनके लिए नेक्स्ट ट्रैक।
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208-706-0915 for a free no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me.
9: Southall Travel, at all protected.
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
12: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: Sonatours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
9: Like a Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बारात।
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास सेवन। यस, सेवन सेवन, इतने सारे सेवन दिख गए मुझे अभी स्क्रीन पे, है ना। इतने सेवन कहाँ से आ गए भाई। ओके, सो टाइम फॉर अ लाइफ थियरी। ओके, तो आज की जो लाइफ थियरी है दैट इज कॉल्ड द ब्लैक स्वान थियरी। अब होता यह है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी टाइम एक जैसा नहीं होता है। ओके, तो खुशियाँ चलती है तो बहुत लंबी नहीं चलती, और दुख भी चलता है तो बहुत लंबा नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ज़िंदगी में ना एक स्लो टाइम ऐसा आ जाता है, और उस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी अपनी एस्ट्रोलॉजिस्ट से या अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, बस चीज़ें ना ठहरी ठहरी सी लगती है। उस टाइम पे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। एंड कभी कभी लोग इसी टाइम पे गिव अप करने के मूड में आ जाते हैं कि भाई बस अब ये फील्ड मैंने छोड़ देनी है, अब मैंने इसमें जॉब नहीं करना, अब मैंने बिज़नेस नहीं करना, अब मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन कई बार जब चीज़ें बहुत स्लो पेस में चल रही हो, आपको लगता है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है, ये प्रोग्रेस होगा कि नहीं, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, जब हमें ऐसे लगने लगता है तभी वो एक फ़ोन कॉल, वो एक इंसान, वो एक बार की हुई बात, वो एक बार किया हुआ इंटरेक्शन एंड एक बार लिया हुआ इनिशिएटिव, वो वर्क करता है आपके लिए। इसीलिए ज़िंदगी में आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो आपके फेवर में नहीं है या ऐसी नहीं है जो आपने सोची थी, उस डायरेक्शन में चीज़ें अगर नहीं जा रही हैं, तो ये मत सोचिए कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। द ब्लैक स्वान थ्योरी हमें यही बताती है, जताती है और सिखाती है कि जब सिचुएशंस बहुत आपका डाउनफॉल चल रहा है ज़िंदगी में, तब हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि वो एक चीज़, एक पर्सन, एक फ़ोन कॉल, एक ईमेल, एक एप्लीकेशन, न जाना आपके लिए क्या लेके आए। जिंदगी है आपकी, ब्लैक स्वान थ्योरी, उसमें बिलीव करना है नहीं, मर्जी है आपकी। और कैसी लगी ये थ्योरी जरूर बताइएगा।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. The Evening Show with Ashwini.

0: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम. फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम.
2: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. We'll be right back.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: For £1, you'll get 129.59 Indian rupee, 373.32 Pakistani rupee, 451.79 Sri Lankan rupee, 165.72 Bangladeshi taka, 88.64 Afghani, 173.63 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, and 63.3 Mauritian rupee.
5: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: Gold is currently trading at £96.26 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: चलिए मिला लेंगे एक बार फिर से घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है. इट्स 7:50, 7:50 एंड इस आवर के आखिरी गीत तक आप और हम पहुंच रहे हैं. हम जोली फिल्म से सुनाने वाली हूं आप सबको लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में लास्ट गीत ऑफ फर्स्ट आवर. ठीक है, मंडे इवनिंग का पहला जो आवर है वो खत्म होने में आ रहा है. आप लोगों ने सभी ने, मोस्ट ऑफ द लिसनर्स सेड कि द ब्लैक स्वान थ्योरी हमने पहले सुनी नहीं थी और बहुत अच्छा लगा. And it's going to be very, very helpful for all of us. क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम हिम्मत छोड़ देते हैं लाइफ में. बिल्कुल हो जाता है जी. देखिए, हम सबको सारी चीज़ें पता हैं, ओके, हर चीज़ का ज्ञान हम सबको है, लेकिन किसी और से जब हम चीज़ें सुनते हैं ना तो हमारी हिम्मत बढ़ती है और बंधती है. एंड वी आर लकी कि हमारे आस पास ऐसे कुछ लोग ज़रूर हमारी ज़िंदगी में रहते हैं जो किसी न किसी वे में हमें सपोर्ट करते हैं. जी, मेरी ज़िंदगी में भी आई एम ब्लेस्ड इन ग्रैटिट्यूड कि ऐसे लोग हैं. एंड आई ऑलवेज फील कि ज़िंदगी में सिर्फ डोंट बी अ रिसीवर, ओके, बिकम समबडी जो आप दे सकें. देखिए, इनहेल करते हैं और वापस हम एक्सहेल भी तो करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिसीवर बन के रहना चाहिए. लर्न टू गिव, जितना भी जिस किसी वे में हम इस दुनिया को, इस सोसाइटी को वापस दे पाए तो कितनी अच्छी चीज़ है ना. हमारे अच्छा कर्मा तो होने ही वाला है. एंड साथ में व्हेन इट कम्स टू नॉट बीइंग जस्ट द रिसीवर, ओके, दिस इज़ समथिंग आई एक्चुअली वॉन्टेड टू से फ्रॉम लॉन्ग टाइम. एंड दैट इज़ दी, कुछ लोग जो हैं वो मैसेजेस के जल्दी रिप्लाई करते हैं. इफ़ यू पीपल हैव सीन कि मैं भी आप लोगों के मैसेजेस के जल्दी रिप्लाई करती हूँ. दैट डजेंट मीन नॉट ओनली अबाउट मी बट ऑल द पीपल इन योर लाइफ जो आपको जल्दी रिप्लाई करते हैं, दैट डजेंट मीन कि वो उस मैसेज के इंतज़ार में रुके रहते हैं. इट्स बेसिकली अ वे ऑफ रिस्पेक्ट, लेटिंग द पर्सन नो दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ. एंड मैसेज के लिए किसी को कभी भी रुका के नहीं रखना चाहिए. ये मेरा अपना प्रिंसिपल है. दैट्स द रीजन आई डू द सेम हियर. आई रिप्लाई यू बैक जल्दी से.
3: Ashwini, brightening up your weeknights.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
8: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में।
7: सच?
8: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू, सब एक ही जगह।
9: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इल्फोर्ड, IG2 6HA। कॉल करे 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फोर्ड।
10: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner, Leica.

भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आप सभी ने सुना दो सुना नहीं भाई सुने दो गीत। पहला गीत हमने लिया था हम आपके हैं कौन इस फिल्म से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, एंड 90s वाले बच्चे तो बेहद खुश हो गए होंगे, माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान पे फिल्माए गए थे ये गीत। नेक्स्ट हाथों की चंद लकीरों का सुरेश वाडकर एंड अनवर जी की आवाज़ में विधाता फिल्म से सुनाया, तो 80s वाले बच्चे खुश हो गए अभी, और 70s 60s सबको खुश करेंगे भाई, ये शो है ही इसीलिए कि दिन भर की थकान आप लोगों की जो है आप घर पे आते हैं सोचते हैं नाउ वी विल हैव सम रिलैक्सिंग टाइम, थोड़ा इन्जॉय करेंगे म्यूज़िक को, इसीलिए आप सबके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आपकी दोस्त अश्विनी लेके आती है बड़े चुनिंदा गीत। नेक्स्ट ट्रैक जो है इसमें थोड़ा सवाल जवाब होने वाला है, किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: अंदाज में। क्या हो सकते हैं सवाल जवाब, अंदाज लगाना चाहते हैं? देख लीजिए, सुन लीजिए।
1: Feel good classics all day. This is like a gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 129 रुपए और 45 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:28, देखो ना सेकेंड आवर के हाफ एन आवर भी खत्म होने आ रहा है. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाले हैं, दैट विल बी इमोशन ऑफ द डे, विच इज मोटिवेशनल मंडे, है ना. हर एक दिन को हमने यहाँ पे नाम दिया है मोटिवेशनल मंडे, टेरिफिक ट्यूसडे, फील गुड वेंसडे, थ्रिलिंग थर्सडे एंड फैंटास्टिक फ्राइडे. वीकेंड पे मैं नहीं आती, तो मैंने वीकेंड के किसी भी दिन को कोई नाम नहीं दिया है. ओके, सो पीपल हु सफर फ्रॉम हेयर फॉल शुड ईट मोर पम्पकिन सीड्स टू स्ट्रेंथन हेयर रूट्स, सपोर्ट हेयर ग्रोथ एंड इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ. तो अपने आप बालों की जो जड़ें हैं और बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं पम्पकिन सीड्स. एकदम से मैं हेल्थ पे चली गई, गानों की बातें हो रही हैं, कितनी सारी और बातें भी इस शो में होती रहती थी, आपकी हेल्थ के बारे में तो बात होनी चाहिए. तो अपने बालों की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, पम्पकिन सीड्स खाइए. नेक्स्ट ट्रैक आपको सुना रहे हैं मुकेश जी की आवाज़ में, धर्म करम से. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस इज. ध्यान से सुनिए इसके लिरिक्स के एक एक शब्द, हिम्मत बंधाते जरूर हैं. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स. इमोशन ऑफ द डे.

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: जी चलिए अब जरा बात करेंगे गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में वर्ल्ड बातें कर रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम जरूर इस शो में बातें करते हैं अबाउट द गुड न्यूज। छोटी छोटी न्यूजेज हैं जिसके सुन के हम भी स्माइल करते हैं। तो न्यू फ्लोरिडा पेट लॉ, फ्लोरिडा नाउ बैन्स कन्विक्टेड एनिमल अब्यूजर्स फ्रॉम कीपिंग पेट्स। जिन्होंने भी अपने पेट्स को परेशान करके रखा होगा उन सबको तो अभी ना ना ना, पेट्स तो उनके पास में दिखने वाले नहीं। सच में ये लॉज ना हर कंट्री में आने चाहिए आइडियली, बिकॉज व्हेनेवर आई सी दोस क्लिप्स जहाँ पे लोग डॉग्स को स्पेशली परेशान करते हैं ना हमारे एशियन कंट्रीज में, तो आई एक्चुअली लूज माई पेशेंस बिकॉज आई एम अ पेट पेरेंट, आई हैव अ लैब्राडोर डॉग एंड आई जस्ट कैनॉट सी दोज रील्स। एनीवेज, थाईलैंड डिचेस प्लास्टिक, सम थाई सुपरमार्केट्स आर रिप्लेसिंग प्लास्टिक पैकेजिंग विद बनाना लीव्स। बिल्कुल, जो चीज़ें वेस्ट होने वाली हैं अगर उनका सदुपयोग किए जाए तो देखिए प्लास्टिक भी कम होगा एंड दीज लीव्स ये अच्छी तरीके से यूज़ भी हो रही हैं। The country's first solar plant is expected to cut 120,000 tons of carbon emission each Kazakhstan starts solar. तो वहाँ पे जो है अभी सोलर आ गया है तो कितनी सारी चीज़ें ईजी हो सकती है। इंडोनेशिया एलिफेंट राइड्स, सो इंडोनेशिया हैज़ बैंड एलिफेंट राइड्स, अ मेजर विन फॉर एनिमल वेलफेयर एंड एथिकल टूरिज्म। अब कई देशों में जो वहाँ पे लायन होते हैं, चीता होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जू में रखे जाते हैं, या कुछ स्पेसिफिक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग उन एनिमल्स के साथ में खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, डू दे एक्चुअली रियलाइज़ कि वो एनिमल्स को कितना क्या क्या ऐसी मेडिकेशन दी जाती है या क्या क्या ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जिसकी वजह से वो एनिमल जो है वो प्रॉपर कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते एंड That is so bad, you know, just to click a picture with that animal, kya halat hoti hogi sach mein un animals ki. Rare gorilla twins, a gorilla family in Vergwena National Park has welcomed extremely rare set of twins. Kangaroo rebounded. The endangered species of Kangaroo Island have rebounded by 90% thanks to a predator-proof fence. Kyunki wahan ke kangaroos ki jo सेफ्टी है उसके लिए जो फेंस लगाई गई अभी वो एनिमल्स बच रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स मैं ना मेरी आई थिंक मेरी टोनिंग ही चेंज हो जाती है कम्प्लीटली, है ना। इट्स 38 मिनट्स पास्ट 8, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अच्छा, अब रूठने मनाने वाले जो लोग हैं ज़रा खुश हो जाइए क्योंकि अगला गीत जो है आप सभी पसंद करने वाले हैं। वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स इसीलिए आती है ताकि सारे के सारे जो हमारे अलग अलग एरा के बच्चे हैं किसी ने लिख के भेजा मुझे, मैं 80s वाला बच्चा हूँ और मैं खुश हो गया हूँ, है ना। मैं जब कहती हूँ कि 90s के बच्चे खुश हो गए तो 80s के खुश हुए, बस खुश होते रहिए, फिर से 80s वाले बच्चे खुश हो सकते हैं अगर आपने अपने बचपन में ये गीत सुना है तो।
0: ये है लाइका गोल्ड।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: भाई लाइका प्रेजेंटर्स के साथ में गपशप हुई है एपिसोड नंबर 25 में। कैच दिस एपिक कॉन्वर्सेशन विद डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रह्मभट्ट, एनिका, रूबी रजा, रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर। सबकी जर्नीज कैसी रही, इनके कितने सेक्रीफाइसेस रहे, जब ये रेडियो में आए तो क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर ऑन द इवनिंग शो।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
5: 25? Seriously?
4: Sounds like Ojo time.
5: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
4: Sorry about the wait. How can I help?
5: You can help me celebrate. I won.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
14: Yes!
13: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
15: You have to be really dedicated to be able to
16: become a
15: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
16: True.
15: Mm. Whether it's at home or whether it's family.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
17: Ye hai
18: Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 129.65 Indian rupee, 373.42 Pakistani rupee, 451.88 Sri Lankan rupee, 165.76 Bangladeshi taka, 88.71 Afghani, 173.66 Kenyan shilling, 1.34 US dollars and 63.31 Mauritian rupee.
6: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
16: Like a gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £96.26 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: ओके तो ये सावर में आप कौन सा आखिरी गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसके पहले बात हो जाए वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स जिसे आप सभी ने सुना आशा भोसले की आवाज़ में सनम तेरी कसम व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रैक दैट इज न जाने कितने लोगों ने कितने लोगों के लिए ये गीत गाया होगा है ना अच्छा जी तो अभी पैंडेमिक के बाद से एक मैसिव चेंज जो सब लोगों में आया है कि लोग कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके काफ़ी अवेयर हो गए हैं एंड स्पेशली वेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स है ना स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज और रिलेटिव्स चलो इनसे तो लोग कनेक्टेड रहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में अब जो हैं स्कूल और कॉलेजेस की गैदरिंग्स रीयूनियंस जिसे हम कहते हैं वो होने लगी हैं दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं ऑब्वियसली माई स्कूल ग्रुप ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग एंड जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं सबकी डेट्स कैसी मिलेंगी और सब कैसे पहुँच सकते हैं इस पर डिस्कशन चलते रहता है आई एम श्योर आप लोगों के स्कूल ग्रुप्स पर भी ये सारी चीज़ें होती होंगी है ना विच इज़ वेरी कॉमन कॉलेज ग्रुप्स में भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं व्हेन इट कम टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस अगर आप अपने स्कूल के ग्रुप के साथ में ज़्यादा क्लोज रहे होंगे तो कॉलेज ग्रुप के साथ में उतनी रिलेशनशिप काफ़ी लोगों का कहना है कि उतनी रिलेशनशिप हमारी कॉलेज के लोगों के साथ में नहीं बन पाई अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्कूल में इतना ग्रुपिज्म चलता था तो कॉलेज के हमारे जो दोस्त हैं वो बन गए हैं हमारी ज़िंदगी भर के लिए दोस्त लेकिन देखिए दोस्ती एक इतना प्यारा रिश्ता है कि आपके स्कूल और कॉलेज के दोस्त तो आपके होते ही होते हैं लेकिन ज़िंदगी के पड़ाव में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उस सुहाने सफ़र में भी आपको लोग मिलते रहते हैं और वो दोस्त जो है किसी न किसी एंजल की तरह आपकी ज़िंदगी में आपके लिए काम करते रहते हैं Yes, in gratitude again, I am blessed with such lovely angels in my life as well. And कहीं ना कहीं यही हो जाता है कि जब हम जिंदगी की पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जब देखते हैं तो जिंदगी के जो दुखद पल हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं We all are in the same boat. I know, like 2025 जो है सबके लिए बहुत ग्रिलिंग रहा बहुत सारे मैसेजेस जब हमें यहाँ पे आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि पिछले साल से अब तक का जो सीज़न जो है काफ़ी हेक्टिक सबके लिए चल रहा है एंड काफ़ी मतलब ये एक रोलर कोस्टर ही रहा है सबके लिए कि भाई अब ये साल कैसे निकलेगा आगे का साल कैसे निकलेगा मुश्किल पड़ाव तभी आता है जब आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हीरा तभी बनता है जब वो कोयले की खान से उसको अच्छे से पॉलिश करके निकला जाता है तो वैसे ही ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आ रही हैं बस पॉजिटिव रहिए पॉजिटिविटी के लिए ये शो सुनिया कीजिए मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी इस आवर का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं कभी कभी फिल्म से तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती ज़रूर सुनिएगा एंड जिन लोगों ने आज की थियोरी मिस की है द ब्लैक स्वान थियोरी इट इज़ ऑलरेडी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल रेडियो वाली अश्विनी आप वहाँ ज़रूर चेक कर सकते हैं
0: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
16: Like a Goon.
18: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
19: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
5: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
18: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
19: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
16: Feel the fun. PlayOjo.
7: 18 plus gamble aware.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271
20: एक्सपीरियंस
3: experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
20: The Evening Show with Ashwini.
0: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट आवर ऑफ मंडे का हमारा जो मोटिवेशनल मंडे आप और हम साथ मनाते हैं ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया ना. दोनों ही गीतों से ना हमारा मन प्रफुल्लित हो गया एकदम. जख्म फिल्म से सुनाया आपको गली में आज चांद निकला, अलका याग्निक की आवाज़ में सुनाया था आप सभी को ये गीत. एंड इसके बाद में रॉके फिल्म से हम तुमसे मिले, लता मंगेशकरन किशोर कुमार की आवाज़ में ना ये मुझे बड़ा ही हैप्पी हैप्पी सॉन्ग लगता है, बड़ा रिफ्रेशिंग. अब रिफ्रेशिंग की परिभाषा आप और हम समझ चुके हैं, गर्मी में जिस ठंडे ठंडे पानी की फुहार हमारे चेहरे पर लगती है तो कितना रिफ्रेश लगता है. बस उसी

0: तरीके से ये गीत भी मेरे लिए है। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाऊंगी, उफ, मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि अब अश्विनी को बाय बोलेंगे, हाँ जा ही नहीं सकते, पक्का जा नहीं सकते। क्यों ऐसा कह रही हूँ? ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ तो देख लो, सुन लो।
1: एक पाउंड
0: के बदले आपको मिलेंगे 129 रुपए। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घर यहाँ एक बार देखते हैं टाइम कितना है. इट्स 37 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. वही आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका मेरा साथ. बता दें आपको गोल्ड नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विस है तो ट्रैवल कर रहे हैं काम कर रहे हैं जरूर गोल्ड नाइट सर्विस होने का अमेजिंग प्लेलिस्ट वहाँ पे आप लोगों के लिए हमने लगा रखी है. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. बहुत सारी रेडियो चैनल्स हैं आपके सुनने के लिए एंड डे टाइम में टिल शाम शाम नहीं भी रात 10 बजे तक आप हमारा साथ देते हैं. उसके बाद में डेफिनेटली दीज रेडियो चैनल्स आर देयर टू एंटरटेन यू. अभी आपको हमने सुनाया आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी है उनकी फिल्म रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर की आवाज़ में ए दिले नातन. कितना ठहराव वाला ये गाना है ना, कितनी स्टिलनेस लगती है इस गाने को सुनते हुए. हमें भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना एक ठहराव आ गया है. उसके बाद आपको दो चोर फिल्म से सुनाया लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में काली पलक तेरी गोरी. 1972 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी. अच्छा गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया. मंडे है, मंडे तो ऐसे ही ब्लू ग्रीन येलो पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं सबको. तो चलिए मंडे ब्लूज़ को हम करेंगे दूर क्योंकि मैं आपको सुनाने वाली हूँ कव्वाली. और वो भी कोई ऐसी वैसी कव्वाली नहीं, प्राण जी थे उस कव्वाली में. धर्मा फिल्म से ये कव्वाली आपके लिए लेके आए हैं मोहम्मद रफ़ी एंड आशा भोसले की आवाज़ में. क्या अभी सुना रही हूँ? ना ना, इतनी जल्दी क्या है, रुको जरा, ठहरो जरा.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 129.57 Indian rupee, 373.25 Pakistani rupee, 451.67 Sri Lankan rupee, 165.69 Bangladeshi taka, 89.34 Afghan Afghani, 173.71 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.28 Mauritian rupee.
8: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
9: Leica Gold.
0: Go
9: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £96.26 per gram.
9: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Like a Gold.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
11: The Evening Show with Ashwini.
2: ओके जी, मिला लेंगे घड़ियां. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. तो कवाली बहुत ही बढ़िया, बड़ी अमेजिंग, बड़ी ही ढांसू और बड़ी ही धुआंदार लगती है ये कवाली. देखने में तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि प्राण जी की आँखें तो इतनी बड़ी बड़ी आँखें और जिस तरीके से ना पूरा इन्वॉल्व होकर वो गाते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है. वही कल सुबह आएंगी हमारी प्यारी काजल, उनका दीजिएगा साथ. हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स बहुत मेहनत मशक्कत करके पूरा शो आपके लिए लाते हैं, तो ज़रूर सबका साथ देते चलिएगा. कल आप और हम साथ में मनाएंगे टेरिफिक ट्यूसडे, है ना. तो ट्यूसडे सेकेंड डे ऑफ द वीक आ जाता है और उसके बाद तो मेरा फेवरेट डे. बहुत जल्दी जल्दी समय जा रहा है ना, फास्ट निकल रहा है ये. दिस इज 20th ऑफ जुलाई आ भी गया, लाइक 7th मंथ ऑफ दिस ईयर 2026 का 7th मंथ, उसका देखो ना केवल 10 दिन बाकी है अभी. ओके जी, हमेशा की तरह यही कहेंगे कि प्यार बहुत खूबसूरत है, तो प्यार दो, प्यार लो, और पावर तो कभी भी किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी पावर का यूज़ नहीं करता होगा. ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. कम्युनिकेट करें, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी है बोल के दिखाएं, क्योंकि नोबडी कैन रीड योर माइंड. दैट नोट आई हैव टू से, अपने अपने हेल्थ की बहुत बहुत केयर लीजिए क्योंकि मौसम फिर से ठंडा हो रहा है. अभी शाम का वेदर जो है ना, एक हल्का फुल्का जैकेट रखिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे 25 डिग्रीज है, इतनी धूप है, कहाँ पे गर्मी होने वाली है, कहाँ पे ठंड लगने वाली है. गर्मी देर में है, लेकिन शाम में जब आप निकलते हैं यू डेफिनेटली नीड अ जैकेट फॉर योर सेल्फ. चलिए कहें आप सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: Location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
0: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Cold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर, सीरीन हॉलिडे साथे।
4: सीरीन हॉलिडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दार एस सलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
5: बस पैक करो आणि रिलैक्स थई जाओ,
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirenholidays.co.uk पर।
6: You know, I fans shout at football matches.
7: Oh, wake up!
6: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
12: Leica गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
13: I'm

परी, ये सुबह मस्ती भरी, यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंg ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime Location
1: High Appreciation
2: in Dubai
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410 साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदा बहार गीत